0: Alive 90.5.
1: You are listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
2: You wouldn't drink and drive, but did you know that being awake for 17 hours can have a similar impact on your driving as a blood alcohol content of 0.05? So remember to get a good night's sleep, take regular breaks, and don't trust your tired self. How tired are you? Visit testyourtiredself.com.au. A message from the New South Wales Government.
3: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
4: आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये हिंदी कार्यक्रम वीना शशि कुमार के साथ और मैंने जैसे कहा था कि ये बार हम बात करेंगे जो किंग्स बर्थडे ऑनर्स के बारे में ये सम्मान दिया गया है 2026 अभी जो किंग्स बर्थडे गया है 2026 में सभी ऑस्ट्रेलियंस को एक दिन की छुट्टी मिली और करीब करीब हज़ार ऑस्ट्रेलियंस को एक उनके असाधारण कंट्रीब्यूशन जैसे उन्होंने काम किए हैं उनके काम की वजह से उनको सम्मान दिया गया और 949 लोगों को ये सम्मान दिया गया था और ये अनाउंसमेंट किया गया गवर्नर जनरल सैम मॉयस्टन ने और इन्होंने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग थे और ये ऑनर्स का जो डिवीज़न है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक होता है जो जनरल डिवीज़न होता है जिसमें 703 लोगों को ये ऑनर दिया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो मिलिट्री डिवीज़न होता है ये कुछ लोगों को दिया गया फिर 30 लोगों को दिया गया फिर मेरिटियस अवार्ड दिया गया 149 लोगों को और डिस्टिंग्विश्ड एंड कंस्पिक्यूअस अवार्ड 70 लोगों को

दिया गया, नहीं 7 लोगों को दिया गया, और इसमें 10 लोग जो थे जो इंडियन बैकग्राउंड के थे, जो भारतीय बैकग्राउंड के थे, उनके बारे में मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी. और ये सारे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैटेगरी में थे. एक तो थे प्रोफेसर वल्समा इपियन, जो एक प्रोफेसर हैं चाइल्ड साइकेट्री के UNSW में, और इनको ये और डिस्टिंग्विश ऑनर दिया गया न्यूरो डेवलपमेंट रिसर्च ऑटिज्म एडवोकेसी के लिए. फिर मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम वेंकटेश, इनको ये दिया गया, एक इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड गोल्ड कोस्ट के हैं, इनको ये रिकग्निशन दिया गया फॉर लाइफ सेविंग लीडरशिप, जो इन्होंने दिशा दिखाई है ग्लोबल क्लिनिकल सेपियसिस रिसर्च में और मेडिकल ट्रेनिंग के लिए. फिर मेडल ऑफ ऑर्डर AOM जो डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा को दिया गया है, ये थे विक्टोरिया के, मेलबर्न के एक GP हैं, जिनको फ्रंटलाइन हेल्थ केयर और रेफ्यूजी और माइग्रेंट कम्युनिटी को के मदद के लिए ये दिया गया है, और इनको ये ऑनर दिया गया है इन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हमारी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए. अगला था डॉक्टर दिलीप कुमार घनकारी, ये भी गोल्ड कोस्ट के हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, इनको ये दिया गया कि हीलिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो अपने लिए कर नहीं सकते हैं, जिनकी मदद कोई नहीं करता है, जिनके लिए सपोर्ट बहुत कम होता है, उनके सपोर्ट, उनको सपोर्ट करने के लिए, और रनिंग ये मुफ्त में रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते थे डिफॉर्मिटीज़ फॉर ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो उनके लिए ये दिया गया है. डॉक्टर अतुल कुमार गर्ग, ये पर्थ के हैं, इनको कम्युनिटी 30 साल अब ये वॉलेंटियर हैं, 30 साल के इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जो लोगों की मदद करने के लिए और मल्टीकल्चरल इंगेजमेंट करने के लिए ये दिया गया है. और फिर हैं मिस्टर सौरभ मिश्रा, जो मेलबर्न के एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो कमर्शियल और फिलान्थ्रोपिक ग्रोथ, तो जो कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं, और इनको ये हर एरिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया है, जैसे हेल्थ केयर, पढ़ाई, कल्चरल सपोर्ट, इन सब के लिए दिया गया हुआ है. इनका एक मल्टी हर जगह पे इनका जो पात्र ये निभाते हैं, इनके लिए दिया गया है. फिर है मिस्टर चेतिकार्ड ओमेन थॉमस, ये 80 साल के ऊपर के हैं, मेलबर्न में हैं, और ये मलयाली एसोसिएशन विक्टोरिया के बहुत जाने पहचाने इंसान हैं, जो इन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन मलयाली एसोसिएशन में जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया गया है. फिर मिस्टर नौशीर ईरानी सिडनी के हैं, ये आए थे सिडनी 1979 में, और इन्होंने अपने इंडो ऑस्ट्रेलियन कल्चरल सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन ज़ोरास्ट्रियन एसोसिएशन, इनमें इनकी जो इन्होंने जो मदद किया है इनको ग्रो करने के लिए, उसके लिए इनको रिकग्नाइज किया गया है. फिर लास्ट दो हैं मिसेस उषा किरण चंद्रा, जो ब्रिस्बेन की हैं, लैंडस्केप एक्टिविस्ट हैं, और मल्टीकल्चरल क्वींसलैंड कल्चरल फेस्टिवल में इनका काफ़ी योगदान है. और लास्ट हमारी सिडनी की मैंने जानते भी हूँ, मिसेस बिजेंद्र दुग्गल जी, जो एल्डरली कम्युनिटी में काफ़ी काम करती हैं, इनको इनके रिकग्निशन में दिया गया है. तो हमारी तरफ से और अलाइव 90.5 की तरफ से आप सबको बहुत मुबारक, और हमें एक बार काफ़ी गर्व हो रहा है कि ऐसे 1000 लोगों में 10 हमारे इंडियन बैकग्राउंड के भी थे. और इसी के साथ मैं आप ये जो NSW हेल्थ का एक ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं इसके बारे में आप प्लीज़ ध्यान करें, और अभी क्योंकि फ्लू का सीज़न चल रहा है इसलिए ये NSW हेल्थ की ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है. तो क्या आपकी आयु 65 यानी 65 साल या इससे अधिक है, इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं. आपके लिए कौन सा टीका सही है इसके बारे में आपके GP या फार्मासिस्ट से आप बात करें, और आप अपना टीकाकरण ज़रूर करवाएं. और इसी के साथ अगला गाना जो थोड़ा ये ऑनर्स के बारे में भी है और हमारी लड़कियों के बारे में है, तो मेरी बेटी का अगला चॉइस सुनिएगा ज़रूर.

0: Alive 90.5.
1: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au, plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
2: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में और वापस एक और बार मैं जो किंग सम्मान जिनको मिला है उन सबको एक और बार तहे दिल से कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी और आपने जो भी काम किया है उससे ये सुन के बड़ा ही गर्व होता है इसके बारे में आप और अगर जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें इसके बारे में अगर मैंने सिर्फ एक गूगल किया था गूगल में बहुत सारे लिंक्स आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर और आप पढ़ें और अगर आप किसी को जानते हैं इस लिस्ट में उनको फ़ोन करके बताएं कि उनको कि वो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ठीक और अभी दूसरा जो एक मैंने कम्युनिटी इवेंट के बारे में सुना इससे मुंह में पानी आ गया क्योंकि ये इवेंट है मैंगो फेस्टिवल जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है और ये हो रहा है हावी लो पेविलियन में जो कासल हिल शो ग्राउंड्स में है और 21 तारीख को हो रहा है तो ये जो मतलब मैंगो की बात सुन के वो भी इंडियन मैंगो की बात सुन के क्योंकि वहाँ से मैं आती हूँ तो उसकी बात सुन के मतलब भैया मुंह में तो बड़ा पानी आ जाता है मुझे और इतने सारे किस्म के मैंगोज़ हैं हज़ार तो मेरे को तो लगता है 1,000 से ज़्यादा ही होंगे आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट मैंगो कौन सा है क्योंकि अगर आप चाहते हैं मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो नंबर है 0405905905 तो आप मैसेज करके मुझे बताएं कि आपका फेवरेट जो आम है वो कौन सा है हमारे लेकिन मैंने तो बहुत सारे ट्राई किए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों से इंडियन मैंगोज आ भी रहे हैं जैसे अल्फांसो या हापूस तो बहुत ही फेमस है मैं बॉम्बे से हूँ तो फिर बॉम्बे में हापूस तो मिलता ही मिलता है और मैंने बहुत खाया हुआ है उसके पहले मैं रहती थी हैदराबाद में तो जहाँ मैंने बंगनपल्ली खाया हुआ है जो बड़ा सा होता है एक मैंगो खा लो बस मतलब खाना वाना नहीं खा सकते उसके बाद फिर है केसर दशेरी लंगरा तोतापुरी का तो एक बड़ा पेड़ था हैदराबाद में हमारे घर के पीछे तो हम लोग ऐसे निकाल के मतलब और स्कूल के बाहर जो ठेला लगता था उसमें नमक मिर्ची लगा के तोतापुरी खाते थे क्योंकि ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता था और काफ़ी मज़ेदार भी होता था और चाट में तो बड़ा भाई बड़ा मज़ा आ जाता था वो मैंगो डाल के अब थोड़ा सा मैंगो डालो भेलपूरी में डालो या फिर सूखे भेल में डालो आप कैसे अपना मैंगो कैसे पसंद करते हैं एक राइप मैंगो तो सभी खाते हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है बट जो खट्टा मैंगो होता है जो जिससे अचार बनता है किस्म किस्म का अचार बनता है मेरे लिए तो भाई अचार के नाम से मुंह में बड़ा पानी आने लग गया मुझे लेकिन जो समर हॉलीडेज़ में इंडिया में समर में मिलता था मैंगोज यहाँ के समर में भी यहाँ मैंगोज मिलता है बट जैसे इंडिया की यादें कह रही हूँ मैं अप्रैल से मैंगोज आने शुरू होते थे और इतने किस्म किस्म के मैंगोज आते थे और कुछ मैंगोज से सिर्फ अचार बनते थे कुछ मैंगोज ये होते थे कि उसको रख के उसको स्वीट अपने मैंगो लस्सी बनाते थे तो आपको कैसे पसंद है आपका मैंगो खाना मैंगो तो मेरी दादी की नानी की के अचार याद आ गए मैंगो का नाम सुन के लेकिन अगर आप इंडिया की यादें ताज़ा करना चाहते हैं तो मैंगो फेस्टिवल में ज़रूर जाएं मैं जितना मैंने देखा था कि फ्री एंट्री है आप और अगले संडे को है 21st को तो ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें और इसके बाद वाला जो गाना बजेगा वो तो मैंगो की लत के बारे में ही है लेकिन उसके पहले जो NSW हेल्थ का जो फाइनल मैसेज है आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों और गंभीर रोगों से सुरक्षित रख सकता है आज ही अपने GP या फार्मासिस्ट से बात करें इसके बारे में healthdirect.gov.au/NSW flu vaccine पर जाएं और अधिक जानकारी के लिए अभी सुने आज का अगला गाना जो मेरी बेटी का एक और फेवरेट है और मैंगो के साथ अच्छा खासा बैठ जाता है

0: 90.5.
1: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
2: Station sponsor.
3: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ आप सुन रहे हैं कुछ दिलचस्प खबरें इंडिया और इंडियन कम्युनिटी के बारे में अगला जो मैं आपसे बात करना चाहती हूं वो है इंटरनेशनल योगा डे जो भी जो अगले हफ्ते आ रहा है 21st जून को मनाया गया है इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद शुरुआत की थी इसकी राजपथ में उसके बाद पूरी दुनिया में 21st जून पूरा दिन एक ऑर्गेनाइजेशन अपना योगा योगा का सेशन करता है तो पिछली बार मैंने मैं गई हुई थी पेनेंट हिल्स में ये बार भी मैंने सुना है कि पेनेंट हिल्स जो लाइब्रेरी है वहाँ हो रहा है योगा का सेशन इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर योगा तो मतलब इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी हजारों साल पहले और इसके बारे में अभी इतने डिफरेंट इतने किस्म के योगा लोग प्रैक्टिस करते हैं अष्टांग योगा है हठ योगा है विन्यासा जो थोड़ा स्लो मूवमेंट है फिर यिन योगा इसको बहुत चेंजेस भी लाए गए हैं कुछ टू सूट करने के लिए कि सभी लोग कर सकें इसके लिए इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई हैं एक है रिस्टोरेटिव योगा जो ज़्यादातर रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है फिर है कुंडलिनी योगा जो एनर्जी और ब्रीदिंग पे फोकस करता है लेकिन आप जो भी जिस भी किस्म का योगा आप करते होंगे इसके ये आपका इफ़ेक्ट करता है आपके हेल्थ को और अगर आप ये कर सकें रोज़ कर सकें रोज़ अगर 10-15 मिनट मैं सिखाती थी मैं एक योगा टीचर थी पहले और मैं सिखाती थी योगा इंडिया में और फिर यहाँ भी थोड़े जब पहले आई थी तब थोड़ा मैंने सिखाया हुआ है तो हम थोड़ा भी अगर प्रैक्टिस कर सकें दिन में इससे पूरा दिन काफ़ी आप शांत रह सकते हैं आपने आपको ये तृप्ति होती है कि भाई मैंने आज अपने हेल्थ के लिए कुछ तो किया तो अगर आप स्ट्रेचिंग ही कर लें या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें 5 मिनट भी बैठ के मेडिटेशन कर लें तो बहुत अच्छी बात होती है और दूसरी बात यह है कि 21st को ही हो रहा है तो अगर आपको जाना है आप आम खाएं पहले फिर उसके बाद जाके योगा कर लें तो आम का जो कैलोरीज है वो थोड़ा वहाँ घट जाएगा ये मेरा थोड़ा गंदा जोक था बट ठीक है आप सुन लीजिए अब अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं वो तरफ से तो मैं कुछ भी जोक कर सकती हूँ है ना और खुद ही हंस रही हूँ आप पता नहीं हंस रहे हैं नहीं हंस रहे हैं तो मुझे अगर आप हंस रहे हो तो या फिर आप और कुछ सुनना चाहें तो मुझे ज़रूर मैसेज करें मैंने पहले ही बताया था नंबर है यहाँ का 0405 905 905 हमें मैसेज करें या फिर हमारे वेबसाइट में जाके हमें कोई कमेंट भेजें कि आपको क्या क्या आप और क्या सुनना चाहेंगी मेरी तरफ से मैंने ऐसे तो लोगों से बात करके पता किया है कि सिडनी में एक और बड़ा मज़ेदार इनिशिएटिव चल रहा है जो है सपर क्लब और अगर आप इंस्टाग्राम में जाके ढूंढें तो आपके पसंदीदा सपर क्लब आपको मिल सकता है एक बेलाविस्टा साइड में एक गुजराती सपर क्लब है एक महाराष्ट्रियन सपर क्लब है बेलाविस्टा में नहीं है लेकिन कहीं और है फिर सिडनी सपर क्लब एक मैंने देखा कर्नाटक का फूड के लिए कन्नडिका सपर क्लब तो आप देखें आपको क्या क्विजीन ट्राई करना है ऑथेंटिक क्विजीन इंडियन जो घर पे बुला के पूरे सम्मान के साथ पूरा जो फीस्ट वाला खाना है वो माहौल क्रिएट करके आपको खाना खिलाएंगे तो ज़रूर इंस्टाग्राम में ढूंढ के देखें और आपको जो सपर क्लब ज्वाइन करना है हर महीने में मैंने जितना देखा है हर महीने में एक ना एक सपर क्लब चल ही रहा है तो आप ज़रूर फाइंड आउट करें और देखें और ये नेक्स्ट गाना भी आ रहा है मेरी बेबी डॉल का फेवरेट

0: You are listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
1: Alive 90.5.
2: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अब हमारा जो सेगमेंट है इसमें मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़े भारत की खबरें लाई हूँ. पहला तो ये है कि मैंने अभी रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख रही थी जो कहानी ज़र्सस देसाई की, जो टाइटन इंडिया में जो टाइटन का वेव आया वो कैसे आया. इट्स जो शो है उसका नाम है मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी. जे आर डी टाटा और ज़र्सस देसाई की जो काफ़ी दिलचस्प कहानी लगती है. मैंने थोड़ा जो सिर्फ ट्रेलर देखा है जो बहुत अच्छा है, जो मेरे लिस्ट में अभी है, मैं जाके देखूंगी. लेकिन अगर आपने किसी ने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. ये बड़ा ही, अभी तो टाइटन तो पूरे वर्ल्ड में कंपेरेटिव हो गया है. जो पतले वॉचेस जैसे सोनाटा है, टाइटन एज है, टाइमेक्स है, इतनी सारी उनकी घड़ियां आ गई हैं. तो और हम तो बचपन में टाइटन का ही गाना सुन के बड़े हुए हैं. तो फिर बहुत बहुत ही दिलचस्प कहानियां, ज़रूर देखें और बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. इसके अलावा जो भारत की खबरें हैं उसमें एक है भारत इनोवेट्स, जो ये वीकेंड को हो रहा है. और इंडिया और फ्रांस मिलके ये एक भारत इनोवेट्स करके, जो डीप इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं, भारतीय स्टार्टअप्स हैं, डीप टेक टेक्नोलॉजी के जो इनोवेशंस हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एक ग्लोबल स्टेज मिल रहा है जहां हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं और इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है दिखाने के लिए कि भाई हम भी कमाल कर सकते हैं. तो इसके लिए एक बड़ा इवेंट हो रहा है, तो ये हफ्ते हो रहा है. इससे पता चलता है कि हम सिर्फ इनोवेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, हम रास्ता दिखा रहे हैं, हम हमारा नया खुद का रास्ता बना के दिखा रहे हैं कि भाई हम भी कुछ कमाल की चीज़ें कर रही हैं. तो ये एक पहला है. दूसरा, जो डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में 6 इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप मिला है वाइस चांसलर्स मेरिटियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में. और इसमें ये सिर्फ स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, जो उनकी पढ़ाई और उनका जो दिमाग है उनका एक सम्मान है. और उनको ये हमें दिख रहा है कि हम हमारे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो उनका दिमाग हर जगह पे एक रिकग्निशन और एक जगह बना रहा है अपने लिए. स्पोर्ट्स में तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ है इंग्लैंड और वेल्स में, जहां 12 टीम है उसमें हमारी इंडियन वुमेन्स टीम बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है. और बहुत हमारे इंडियन फैंस तो पहुंच ही गए हैं हर जगह पे हमारे इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए. लेकिन आजकल दो टीम्स को सपोर्ट करते हैं हम, मेल टीम को भी सपोर्ट करते हैं और वुमेन्स टीम को भी सपोर्ट करते हैं. तो एक बड़ा फ़ैन फॉलोइंग शुरू है जो विमेंस टीम के लिए है, विच इज़ एक्सेलेंट आई थिंक, क्योंकि विमेन आर प्लेइंग ब्यूटिफुली. मैंने जो देखा, 2-3 जो मैचेस देखे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई हम ऐसे प्रोत्साहन जो मिलता है तो हमारे देश की नारियां क्या क्या कर सकती हैं. और इंडियन विमेन सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम बना रही हैं आर्चरीज में. आर्चरी जो इंटरनेशनली उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप में. जो बो एंड एरो हमारे देश में, मेरे राम का देश है, तो फिर ऑब्वियसली हम बो एंड एरो तो चलाना जानते ही हैं. लेकिन विमेन अपनी ताकत और अपना जो बो एंड एरो में जो डिसिप्लिन लगता है वो सब दिखा रही हैं पूरी दुनिया को. और एक मेजर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव, 90 इंडियंस पैरा एथलीट्स के फंडिंग और ट्रेनिंग के लिए दिया गया है. ये एथलीट्स जो टैलेंटेड हैं, लेकिन पैरा एथलीट्स जो थोड़े हु आर अ लिटिल डिजेबल्ड, उनके सपोर्ट के लिए है. और उनको ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और कोचिंग और उनके न्यूट्रिशन को कैसे देखें और कैसे बढ़ाएं, इसके लिए ये स्कॉलरशिप निकाला गया है. जो हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ विमेंस सिर्फ क्रिकेट और हॉकी और के आगे भी बढ़ रहे हैं, जैसे आर्चरी में हो गया है और अभी पैरा एथलीट्स के लिए हम लोग एक सपोर्ट कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है, ये एक इंडिया की तरफ से एक प्रोत्साहन है कि भाई हम हर जगह पे नाम कमा सकते हैं और उसके लिए हम प्रोत्साहन भी दे सकते हैं हमारे लोगों को. तो ये मुझे सुन के बड़ी ही खुशी हुई. और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ मेरे लिए मेरे बताने लायक हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज भेजें और मुझे बताएं कि आप अपनी तरफ से, या फिर आप अगर किसी चीज़ को कुछ जानते हैं इसके बारे में, और या किसी को बड़ा सम्मान मिला है या फिर किसी को पुरस्कार मिला है और आप सबको इसके बारे में बताना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे लिखें या फिर मुझे बताएं. आप अगर मुझे जानते हैं कोई ग्रुप में, मैं सारे ग्रुप्स में वैसे भी मैसेज करती रहती हूँ ये शो के बारे में, तो मुझे पकड़ें और मुझे मैसेज करें. इसके अलावा फेसबुक या फिर अलाइव के फेसबुक पेज पे या लिंक्डइन पेज पे या हमारी वेबसाइट पे आप ईमेल या हमें टेक्स्ट कर सकते हैं. अभी अगला गाना सुने, मेरी बेटी का अगला फेवरेट गाना पसूरी.

0: Alive 90.5.
1: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस से इंडिया कनेक्ट में. हमारा वैसे गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है. उसके पहले एक मुझे मैसेज आया है मेरे एक दोस्त का. उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो विराज टंडन है, जो यंग आर्ची कॉम्पिटिशन, जो आर्ची बॉल प्राइस होता है आर्ट गैलरी में, फाइनलिस्ट से 2021-2024 और ये साल भी उनका जो पेंटिंग है NSW आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया गया है. जो तो कंग्रेचुलेशंस विराज, ये तो बड़ा ही ऑनर है. उनका पहला जो पेंटिंग डिस्प्ले किया गया था वो था 9 साल की उम्र में. अभी 14 साल के हैं और तीन बार 9 से 14 के बीच में 3 साल उनका जो पेंटिंग है NSW आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया गया है. सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल ऑनर. कंग्रेचुलेशंस उनको और उनके माता पिता को. तो आज का वैसे समाप्त करने का वक्त आ चुका है. जो कंग्रेचुलेशंस हमारे जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए और जो योगा क्लास आ रहा है, या फिर अगर आप आम खाने जा रहे हैं, अगर आप मुझे मिले तो ज़रूर मिलके हेलो बोलें. और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें साथ ले आती हैं. तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनें और हमें बताएं कि हम और क्या आपके साथ आपके पास ले आ सकते हैं और आपके साथ क्या शेयर कर सकते हैं. और आई होप आपको मेरी बेटी के गाने की कलेक्शन भी अच्छी लगी. किसी को पसंद आए ना आए, मुझे और मेरी बेटी को ज़रूर पसंद आई होगी. तो लास्ट गाना है अंदाज अपना अपना फिल्म का, जो बड़ा ही प्यारा गाना लगता है मुझे. और ये अलविदा कहने के लिए भी एक अच्छा ही गाना है. तो आप सुने और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ और एक नई चीज़, नई न्यूज़ और नई दिलचस्प खबरों के साथ. थैंक यू आज सुनने के लिए. नमस्ते.